अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

सीता भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारों भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।

श्री गोविंद गीता अध्याय 18 है, मोक्ष सन्यास योग। श्री मद्भगवत गीता के अंतिम एवं सबसे बड़े अध्याय में इस संवाद का सारांश है। अर्जुन सन्यास व त्याग के विषय में जानना चाहता है। श्री भगवान कहते हैं कि देह कष्टों से भयभीत होकर कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म के फल का त्याग ही त्याग का मर्म है।

0: का।
1: प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर श्री कृष्ण कर्ता, धृति, ज्ञान, कर्म एवं सुख आदि का विस्तृत विश्लेषण करते हैं।

तत्पश्चात श्री कृष्ण परम गुह्यतम वचन कहते हैं कि हे कौन्तेय, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, वह मेरे भक्त बन जाओ, सभी धर्मों का परित्याग कर मात्र मेरी ही शरण में आओ। मेरा यह वचन सत्य है कि तुम सभी पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करोगे।

श्री कृष्ण इस महान संवाद के पठन श्रवण एवं वाचन का महत्व बतलाते हैं। वह अर्जुन से पूछते हैं कि इस दिव्य संदेश के बाद क्या तुम्हारा मोहजन्य अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन का उत्तर सकारात्मक है। संजय, धृतराष्ट्र के समक्ष इस दिव्य संदेश व भगवान के दिव्य विश्व स्वरूप को स्मरण करता हुआ रोमांचित होकर कहता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण व श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहां नीति है, ऐश्वर्य है, धर्म है, वह उस पक्ष की विजय सुनिश्चित है।

श्रद्धालु प्रभु भक्तों, गोपाल नंदन दुहते जिनको उपनिषद सब गौ समाल, पार्थ वत्स हर साधु भक्ता, गीतामृत है दुग्ध महान। श्री हरिमुख से उद्घोषित इस मधुर वाणी का आपने रसा स्वादन किया। इस दिव्य संदेश के पठन, वाचन, स्मरण एवं श्रवण का लाभ अलौकिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र गीता शास्त्र करे जो पठन प्रेम से युक्त हो, प्राप्त करे वो विष्णु धाम को भय शोकों से मुक्त हो। सचमुच गीता सुवाचन व श्रवण परमेश्वर की अनन्य भक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि मंत्र एक है नाम उसी का, कर्म एक है उसकी सेवा, शास्त्र एक है गीता जिसकी, एक देव की सुख है देवा। आइए इस सर्व मंगलमयी, सर्व अर्थमयी, सर्व धर्ममयी, सर्व शास्त्रमयी, स्वयं परमेश्वर की प्रतिनिधि स्वरूपा

विश्व की उत्पत्ति, उसके विकास और परिवर्तन का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने ही सरिताओं को सागर यात्रा के आरंभ में शिवास्ते पंथाः संतु के आशीष दिए हैं। नदी जो कि स्वभाव से तरल उर्मिल और वत्सल है, तथा महाभारत कार ने जिसकी विश्वस्य मातर कहकर पूजा की है, ऐसी एक नदी उसका आज स्मरण करता हूं। त्रेतयुग में वो त्रितवती, त्रेतायुग में गिरी करने का या मणि करने का, द्वापर में विधुमती चंदना या चंदनावती, और कलयुग में

0: उसके प्रवाह को स्पर्श करने का मन कर रहा है आज। सा भ्रमति
1: वंदन महाकाल। कैसे स्मरण किया मुझे?
0: पल भर रुक जाओ, तभी तो कहूँ ना।
1: आप भी कब रुके हैं? बहते रहना, यही तो हम दोनों का स्वभाव है ना? चलिए बातें करते करते साथ चलते हैं।
0: तुम्हें देखता हूँ और गहराई में जाता हूँ तो अतीत जीवंत हो जाता है। 88,000 ऋषियों ने आपके तट पर तपस्या की है।
1: यह मेरा परम सौभाग्य है प्रभु।
0: आप काश्यप गंगा के नाम से भी लोक हृदय में विराजमान हैं, और फिर आपकी मुक्त धाराएं अरण्य में होकर आनर्थ और श्रभ कहे जाने वाले आज के मेवाड़ और गुजरात में बहने लगी।
1: हाँ प्रभु, और अरावली की गिरिमाला में छलांग भरने से डरती हुई मैं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होकर काले पहाड़ से निकल पड़ी। ऐतिहासिक नगरी उदयपुर राजस्थान के जिला परिषद के प्रमुख श्री भैरवलाल कार्नोट भी मेरे बारे में कुछ यही कह रहे हैं।
2: राजस्थान के अंदर लगभग 44 किलोमीटर के अंदर का पानी साबरमती में जाता है, जिसको साई और वाकल दो नाम से नदी पुकारी जाती है। साई नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका पानी जवई बांध को जाता है, जो पीने के उपयोग और उस इलाके में काम आता है। बाकी पानी सारा बह करके साबरमती में जाता है, और जो हिस्सा हमारे राजस्थान में से निकल रहा है उसकी किनारे पर आदिवासी और गरासिया दो जाति के लोग विशेष तौर से बसते हैं, और ये इनका पानी का उपयोग लिफ्ट करके चाहे वो पंपिंग सेट से हो, चाहे इलेक्ट्रिक पंप सेट से हो, चाहे रेंट से हो, चाहे चरस से हो, उसका उपयोग अपने जीवन को खाने पीने की वस्तु और एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं, जिससे अपना भरण पोषण करते हैं। इसी के साथ इस इलाके में अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, और इसमें बीच बीच में पोखे जा गए हैं, तो विशेष तौर से 3/4 हिस्सा जो इसका क्षेत्रफल है, 3/4 हिस्सा टोटल फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट काफ़ी घने थे लेकिन अब काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, और नए फॉरेस्ट लगाने की काफ़ी कार्य हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी ही ये इलाका वापस आपके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: में लीड ऐसी मीराबाई की चरण ढोली सिर पर चढ़ाकर मैं बापा रावल, महाराणा प्रताप तथा भामाशाह के शौर्य एवं औदार्य की कथाओं को मन में रखते हुए आगे बढ़ी तो देखा मेरे किनारे पर असंख्य साबरों का वास।

0: यह आ गई नदी सेन, ये मेरा प्रथम संगम, और अब आएगा सब देश।
1: हाँ, यानी कि साबर कहाँ था?
0: वही देलवाड़ा गांव के पास, गोगुंडा के गणेश के आशीर्वाद से पावन वाकल ने मेरा स्वागत किया। विशाल जलराशि युक्त वाकल से मिलने के बाद ही मेरी देह बदली।

0: दक्षिण तट पर बनासकांठे के जंगलों का दांता प्रदेश और राम तट पर ब्रह्मा जी का महिमावान खेड़ ब्रह्मा विस्तार, दोनों ही आदिवासी प्रदेश। दांता के सणाली आश्रम की शिक्षा प्रणाली यानी आदिवासियों के जीवन परिवर्तन की पगडंडी।
1: मेरा नाम सुमेश सिंह गंभीर सिंह सोलंकी, प्रमुख तालुका पंचायत दांता, जिला बनासकांठा।
2: अध्यक्ष तालुका पंचायत दांता, जिला बनासकांठा। दांता तहसील के पूर्व विभाग में पर्वतीय विस्तार है, वहाँ अधिकांश आदिवासी लोगों की बस्ती है। आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। दांता तहसील में साबरमती के तट पर सोनाली आश्रम की स्थापना 1957 में की गई थी। इससे पहले आदिवासियों की स्थिति बहुत कंगाल थी। अब शिक्षा और खेती के क्षेत्र में हम आदिवासियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है।
3: माकड़, चंपा और हड़ाद के सोने के पत्थरों की खनिज संपत्ति से मेरे तट पर सीमेंट उद्योग का श्री गणेश हुआ। ये तो बिल्कुल आज ही की बात कही जाएगी। खेरोज के पुल के नीचे स्नान करते हुए यात्रीगण और मेरे पट को हरियाला रखने वाले खरबूजे और टमाटर की बाड़ियों की बात किए बिना तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है।
4: रावर शंकर भाई रेवा भाई गांव खेरोज ना वतनी से साबरमती में
2: मैं रावल शंकर भाई रेवा भाई खेरोज गांव का रहने वाला हूँ। साबरमती नदी के अंदर सब्जियां उगाने का व्यवसाय करता हूँ। टमाटर, बैंगन, लौकी जैसी सब्जियां उगाते हैं और इससे हमारा गुजर बसर कर लेते हैं। हमारे पूर्वज भी यही किया करते थे और आज तक हम भी यही काम कर रहे हैं। हम ये सब्जियां लेकर खेड़ ब्रह्मा जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना पेट पालते हैं। मेरा नाम सीवी। सब्जियां और खरबूजे तरबूज उगाकर 2-3 हजार रुपये कमा लेते हैं और बच्चों का पेट पाल लेते हैं। हम जो कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। हम गरीबों की ओर कोई देखता तक नहीं तो नौकरी का प्रश्न ही कहाँ उठता है। साबरमती ने जो कुछ बोया है वो उग आए तो हमारा गुजरान चल जाएगा, पर फसल अच्छी न हुई तो फिर हमारा तो ईश्वर ही है।
0: और उस पार साबरकांठा का पोसीना। यहाँ आपका पट पथरीला गोल गोल

बसे आदिवासियों ने आपके दोनों किनारों को जीवंत रखा है। आगे जाने पर खेड़ब्रह्मा के लांक, इधर के मारवाड़ तथा दांता के विदलासन के पास आपको हरणाओं

0: साहो तथा भुवनेश्वर के तुल्य मंदिरों के अवशेष आज भी भव्य अतीत की प्रतीति कराते हैं।
1: आपके गरीब प्रदेश में भारी वर्षा होने पर आप छलक जाती और आपका पानी तट पर स्थित प्रदेशों पर फैल जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर खेरालू तहसील के धरोई गांव में आप पर बांध बनाया गया है।
2: धरोई डैम जो यहाँ जो देख रहे हैं वो धरोई डैम का जो विभाग है यहाँ का मैं सारे पाला जिसमें यहाँ मैं सेवा बजा रहा हूँ। मेरा नाम है दिलीप पंचाल। ये नदी है साबरमती नदी अरवली हिल्स में निकलती है। ये धरोई डैम बनाने से हमारे 140 गांवों को असर हुई है। ये सब लोगों को हमने पुनर्वाहिवृत किया है दूसरी जगह पर। ये डैम बनाने से कुल मिला के 55,000 एक्टर की वो प्लानिंग है। इसके अलावा अहमदाबाद को हम पानी देते हैं, AEC को पानी देते हैं, जी बोर्ड को पानी देते हैं गांधीनगर में और गांधीनगर टाउन में भी पानी देते हैं।
1: वो दूर दिखाई देता है इबेरियागढ़।
0: सातवीं सदी में यहाँ चीनी प्रवासी ह्यूएन त्सांग आया था। आज इबेर अपने ग्रेनाइट पत्थर और खराही के व्यवसाय से मशहूर है। एकलारा महादेव के दर्शन कर आगे बढ़ें इससे पहले इस प्रदेश में पैदा होने वाले गुजरात के मूर्धन्य कवि श्री उमाशंकर जोशी, उपन्यासकार पन्नालाल पटेल को याद कर लें।
1: पूरा साबरकांठा कपास का घर माना जाता है। आपके नाम से जुड़ी साबर डेरी और यहाँ की सहकारी प्रवृत्ति को कैसे भुलाया जा सकता है। ये रही साबर डेरी के अध्यक्ष हेमा भाई पटेल।
2: साबरमती के किनारे पर साबरकांठा जिला में सहकारी प्रवृत्ति द्वारा 10 सालों को अंदर 12 तीन फैक्ट्री डाली गई है। इसमें से कपास का उत्पादन किया जाता है और मार्केट में अच्छी तरह की जाती है। इसकी इससे थोड़ी तौर पर सारी आमदनी मिलती है। आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जो कपास के सहकारी पर हम सब लोग सक्सेस हुए इसके मुताबिक हमने बिजनेस को अच्छी तरह कचरा करने का निश्चय किया। 65 में हमने सबसे पहले दूध का धंधा चालू किया। 13 से जितनी मंडियों हमने बनाई हैं वो संगठन द्वारा हर एक गाँव में से हर रोज 6 लाख लीटर जितना दूध इधर आता है। पूरा मिलकर हमने 40 करोड़ का लाभ खरीदों के लिए लिया है अमरीवी के पास से। और साबरकांठा जिला का एक अच्छा उद्योग यहाँ सहकार संगठन द्वारा आपके सामने मौजूद है।
1: सामने किनारे पर विजयपुर तहसील का ख्यातनाम जैन तीर्थ महुड़ी जो श्री घंटाकरण वीर के

महुड़ी के पास ही खड़ाओ का वणिकों का सुप्रसिद्ध यात्रा धाम यानी कोटियार्क का मंदिर। इस स्थान पर पहले एक बौद्ध नगरी थी।

0: महात्मती के संगम के बाद ही सावर आप साबरमती बनती हैं, एक महान नदी का रूप धारण करती हैं। यहाँ 40 मीटर ऊंची चट्टानें, घनी बंदराई और कराल कोहर आपके प्रवाह को अनोखा सौंदर्य प्रदान करते हैं।
1: यहाँ से आगे वरसड़ा गांव में मुझे जर्जरी, सिरसरी तथा अमरवेल नदियाँ मिलती हैं। ये मेरा पांचवा संगम। इस स्थान को ऋषिकेश कहा जाता है। देखिए, हम गलतेश्वर महादेव के सानिध्य में पहुंचे। 40 मीटर की ऊंचाई पर आसन जमा कर बैठे हुए ये महादेव

0: की विदा लेते हुए
1: नौशहरा जिले की भी विदा लेनी होगी। पर इससे पहले मेरे तट पर स्थित अमरापुर गांव की ग्राम भारती संस्था को देख लें, क्योंकि इस विस्तार का वर्तमान है ग्राम भारती। इसके बाद यहाँ के संचालक श्री मोती भाई चौधरी से सुने, यही उचित होगा, है ना?
2: ये गांधी ने जो बताया था राष्ट्र शिक्षा के बारे में, उद्योग के साथ शिक्षा, प्रमुख से भी अलग न हो शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी, और ऊंच नीच का जो भेद, जाति पाति का जो भेद है, श्रम करने वालों के प्रति जो ऊंच नीच का भेद है, इसको निर्मूल करना है तो सब बच्चे साथ में रह के, ऊंच नीच का कोई सवाल रहे नहीं, सब साथ में रहे और काम करते जाए और शिक्षा प्राप्त करे, ऐसा जो बुनियादी शिक्षा का ढांचा उन्होंने बताया था उसको नजर में रख के हमने उत्तर बुनियादी का काम इधर ये संस्था करके शुरू कर दिया। हम साबरमती नदी के किनारे के पर बसे हुए गांव के साथ रहते हैं, तो साबरमती नदी ने जीवन दिया, इसके साथ साथ इस जमीन में हमने रिक्लेम करने का शुरू किया। लोग हंसते थे कि ऐसे जमीन में कैसे खेती हो सकती है और फिर से इस खेत कैसे बन सकते हैं, लेकिन आज सब देख के

0: कलकत्ता से भानपुर तक मैं जंगलों तथा पत्थरों में भटकती रही हूँ। भानपुर से धरवई तक का मेरा प्रवास पथरीला और ढलाऊ है। मुझ में लही का गांधीर्य, तापी का सामर्थ्य या नर्मदा की भव्यता नहीं है।
1: और ये सामने दिखाई देती है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा।
0: हाँ, समग्र राज्य की राजकीय, आर्थिक तथा लोक कल्याण प्रवृत्तियों का केंद्र यानी गांधीनगर मेरे किनारे पर स्थित इस आधुनिक नगरी के निर्माण नक्शे में फ्रेंच स्थपति ला कार्बूसो का असर दिखाई पड़ता है।
2: But Gujarat Stadium in the third test match between India and West Indies, the news is that West Indies are 87.
1: देखो, साफ़र देखो, खेल रंग लाया है। ये तो है गुजरात का मोटेरा स्टेडियम। गुजराती लोग खेल को दिमाग से खेलते हैं, पराजय को हंसकर स्वीकार कर लेते हैं और विजय को मुट्ठी में बरकरार रखते हैं।
2: Lloyd from picking up a single. Lloyd is on 36 and West Indies 88 for the loss of 3 wickets.
1: Sabar, यहाँ से आप अहमदाबाद की बन जाती हैं।
0: हाँ, और यहीं पर होता है मेरे अस्तित्व के अर्थ का आरंभ।

0: महात्मा गांधी का नाम दिया। उन्होंने मेरे पश्चिम तट पर मेरे ही नाम से बसे साबरमती गांव में जग प्रसिद्ध आश्रम की नींव डाली और मेरे ही नाम से जोड़ा साबरमती आश्रम। आज इस नाम का उल्लेख करते हुए मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। बापू स्वयं साबरमती के संत कहलाए और मैं धन्य हो गई।
1: यहाँ आपको चंद्रभागा नदी मिलती है, यह आपका छठा संगम। आज का अहमदाबाद यानी किसी समय से आशा भीम का आशावल, फिर आशावल समृद्ध कर्णावती बना, उस समय कर्णदेव इसका राजा। अहमदाबाद की नींव इसी सन 1411 मार्च की 34 तारीख को रखी गई। उसमें मुस्लिम संत शेख अहमद खत्री गंजबख्श की प्रेरणा रही, अहमद शाह इसका बादशाह बना।
0: अहमदाबाद के निर्माण का प्रथम नमूना है भद्रका किला। मुस्लिम स्थापत्य में 100 खंभों वाली जामा मस्जिद, रानी महजियो, कला कारीगरी में अनन्य ऐसी सीधी सईद की जाली वाली मस्जिद, शाह आलम का रोजा तथा समग्र दुनिया को स्थापत्य कला की एक अद्भुत और आश्चर्यजनक भेंट देने वाली गोल की मीनारें मुख्य है।
1: साबरमती आपके तट पर बसा अहमदाबाद व्यक्ति विशेषों से भी भारत भर में अनोखा रहा है। अहमदाबाद नाम देते ही बाबा माणिकनाथ, यहाँ के टकसाल में काम करने वाले ज्ञानी कवि अखा भगत, भारत के लोह पुरुष और किसी समय इस शहर के नगरपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष दादा साहेब मावलंकर, सबकी याद ताजा होती है।
0: इसके अतिरिक्त शीर्ष शिरोमणि कस्तूर भाई लाल भाई, विज्ञान विभूति डॉक्टर विक्रम सारा भाई और ऐसी असंख्य व्यक्तियों की याद हमें गौरवमय बनाती है।
1: अहमदाबाद में फिर से जैसे यंत्र का आरंभ

0: सेठ रणछोड़ लाल ने 1859 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की और देखते ही देखते अहमदाबाद का आकाश नीलों की चिमनियों से छा गया। समग्र भारत की राजकीय सांस्कृतिक सामाजिक एवं आर्थिक हलचल का केंद्र साबरमती आपका किनारा बना। यहीं से भारतवर्ष ने नए युग के आगमन की बधाई दी।
1: प्रभु, आप इतिहास की याद ताजा कर रहे हैं और मैं रोम रोम पुलकित होती जा रही हूँ। मेरे बालू पट पर 1930 की 8 मार्च के रोज आयोजित सभा में आजादी की लड़ाई का जुगल बजा। मैंने देशवासियों के मिजाज को परखा, इतिहास को करवट बदलते देखा और 12 मार्च की दांडी कूच की अभूतपूर्व घटना महाकाल आपके सीने पर भी तो अंकित हो गई। कई कुत्तों की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज लिए बिना आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर उस मिट्टी भर हड्डियों वाले मानव ने जब दांडी यात्रा को यहाँ से पहला कदम उठाया तो पंथर काल देवता आप और मेरा जल दोनों थम गए थे ना।

0: वाला टीला यानी मेथल हरप्पन संस्कृति को सुरक्षित रखकर दब जाने वाली एक पुरातन नगरी जिसके उत्खनन से ईसवीसन पूर्व 1100 तथा ईसवीसन पूर्व 600 के इतिहास के बीच की एक टूटी कड़ी जुड़ गई और एक लुप्त संस्कृति पुनः प्राप्त हुई। वैठा के पास आपको मेसो माध्यम और सीढ़ी को साथ लेकर वात्रक मिलती है। ये आपका सातवां और अंतिम संगम। खारी तथा हाथमती के साथ मिलकर आप सातों नदियों का संगम स्थान सप्तधारा तीर्थ भी कहा जाता है। साबरमती खंबात की खाड़ी दिखाई देते ही आप क्यों उतावली हो गई?
1: मेरे बहते पानी में जो देखा जाना और भोगा कुछ और आपने याद करवा दिया। बहना बहाना और बसाना यही है मेरा धर्म।

नाव मझधार में आने आधी उठत प्रचंड आधी उठता।

0: श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने कामदेव और संध्या के जन्म का विवरण सुना। कामदेव और रति का विवाह सृष्टि के सनातन कार्य का नियामक और भावी समाज के लिए विवाह प्रथा का द्योतक बन गया। सकाम भाव से पीड़ित हो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या ने देहाहुति दे दी, परंतु शिव वरदान से वे प्रातः संध्या और साय संध्या के रूप में अजर अमर हो गई। प्रभु आशीर्वाद से ही वो अपने अगले जन्म में महर्षि वशिष्ठ की विदुषी पत्नी अरुंधति बनी। अब प्रस्तुत है इसके आगे की शिवलीला। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: मुनि शौनक जी, इस प्रसंग के बाद प्रजापति दक्षराज ने अपने मानस से अनेक जीवों की रचना की।
2: महाभाग सूत जी, फिर तो समस्त सृष्टि इन जीवों तथा इनकी संतानों से व्याप्त हो गई होगी।
1: नहीं शौनक जी, जीव उत्पन्न तो हुए परंतु उनकी संख्या बड़ी नहीं। चिंतित दक्षराज परमपिता के पास उपाय पूछने जा पहुंचे।
3: पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री आसिन की अर्थात वीरणी से विवाह करो। तुम दोनों के दैहिक संबंध से सहस्रों जीव उत्पन्न होंगे।
4: परंतु पितामह, इससे प्रजा की अविरल उत्पत्ति कैसे संभव होगी?
3: ये सभी मानव दैहिक संबंध के माध्यम से ही भावी पीढ़ियों को जन्म देंगे। यही तुम्हारे तथा श्रीहरि के लिए प्रजा का विस्तार करेंगे।
4: जो आज्ञा परमपिता।
2: उत्तम, अति उत्तम सूत जी। तो इस प्रकार त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ने मानव जीवन का सूत्रपात किया।
1: हाँ शौनक जी, दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी धर्मपरायण तथा आज्ञाकारी थे। पुत्रों के बड़े होने पर प्रजापति दक्ष ने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ सिंध नद तथा समुद्र के संगम पर स्थित नारायण सर तीर्थ पर तपस्या करो, प्रजा निर्माण का कार्य आरंभ करो।
2: फिर क्या हुआ ऋषिराज सूत जी?
1: दक्ष पुत्रों की तपस्या ने ब्रह्म ऋषि नारद को सोच में डाल दिया।
5: नारायण नारायण नारायण। आइए महामुने नारद, विराजिए।
6: धन्यवाद श्री हरि।
5: कहिए, सब कुशल मंगल तो है?
6: नारायण नारायण। भगवान के होते हुए क्या अकुशल और अमंगल हो सकता है?
5: तो फिर

0: आपके ललाट पर चिंता की ये रेखाएं क्यों?
1: चिंता नहीं महाप्रभु,
0: जिज्ञासा,
1: मात्र जिज्ञासा।
0: जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा मुने नारद?
1: महाप्रभु, क्या आपको ज्ञात है कि ब्रह्मांड में क्या घट रहा है?
0: ऋषिवर, आप तो दसों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं, फिर भला कौन सी घटना विशेष आपको हमारे पास खींच लाई है?
1: प्रभो, दक्ष पुत्र मानव सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं।
0: ये तो हर्ष का विषय है मुने नारद, हमारा तो जन्म ही सृष्टि संचालन के लिए हुआ है, अब उसमें मानवी तत्व भी आ जुड़ेगा।
1: ये तो सत्य है श्री हरि, परंतु
0: परंतु परंतु क्या मुने नारद?
1: प्रभु, क्या संख्या के आधार पर मानव हम पर हावी नहीं हो जाएगा?
0: मुने नारद, हम 64 करोड़ हैं।
1: नारायण नारायण, क्षमा करें प्रभु, अकेली पृथ्वी ही इससे कहीं अधिक मानवों को आश्रय दे सकती है।
0: हाँ? तो फिर क्या किया जाए मुने नारद?
1: नारायण नारायण, महाप्रभु आपके समक्ष भला मैं तुच्छ क्या कहूं, मैं तो सेवक हूं, आप मुझे आदेश दें।
0: तो सुनो नारद,
2: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु के कहने पर नारद दक्ष के सहस्रों पुत्रों के पास गए तथा उन्हें बहला फुसला कर तपस्या से विरक्त कर दिया। दक्ष पुत्र पृथ्वी का अंत ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका कोई अंत ना था।
3: ऋषिवर सूत जी, दक्ष तो अत्यंत दुखी हुए होंगे।
2: हां शौनक जी, पुत्र वियोग से संतप्त दक्ष परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी व्यथा सुन ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी, धीरज रखते हुए प्रजा निर्माण का कार्य जारी रखने का आदेश दिया। दक्ष पत्नी ने पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद मुनि एक बार फिर दक्ष पुत्रों को अनजान तपस्या मार्ग पर भेजने को उद्यत हुए। नारद दक्ष पुत्रों को भ्रमित कर ही रहे थे कि दक्ष वहां आ पहुंचे।
4: ठहरिए मुनि नारद, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पुत्र को भटका रहे हैं?
1: नारायण नारायण, दक्षराज भटका नहीं रहा हूं मैं तो इन्हें पिता की आज्ञा पालन का सही मार्ग बता रहा हूं।
4: आपने पहले भी मेरे पुत्रों को ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना संन्यास का मार्ग दिखाया है। आप तो परम ज्ञानी हैं, क्या आप नहीं जानते कि इन ऋणों से मुक्त हुए बिना मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है?
1: प्रजापति दक्ष, मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम्हारे पुत्र सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।
4: तूने मेरे पुत्रों को ज्ञान का मार्ग नहीं भटकाव का मार्ग दिखाया है, इसलिए मैं दक्षराज तुझे श्राप देता हूं कि तू भी जीवन भर तीनों लोकों में भटकता ही रहेगा, तेरा कहीं स्थाई वास नहीं होगा।
5: शांत शांत हो जाओ पुत्र दक्ष, शांत। ये तुमने क्या कर डाला? अपने मानस भ्राता को ये कैसा श्राप दे दिया? ऐसा क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र।
4: परमपिता, और जो इन्होंने किया वो शोभा देता है? अपनी अपनी कुटिल नीति।
5: कुटिल नीति नहीं दक्ष, कुटिल नीति नहीं, ये काल की नियति है, दैवी विधान है, और इसका निर्धारण स्वयं देवाधिदेव करते हैं। पुत्र, ये तो शिवलीला है।
6: शिवलीला? तो क्या सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है?
5: हाँ। पुत्र, और जो वे करते हैं वो सदैव मंगलकारी ही होता है। पुत्र वियोग का शोक मत करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रजा विस्तार का अपना कार्य जारी रखो।
7: जैसी आपकी आज्ञा विधात, जाओ पुत्रों, जाओ, जैसा मुनि नारद ने कहा है वैसा ही करो।
8: जैसी आज्ञा।
2: ब्राह्मण, फिर कालांतर में दक्ष के यहां 60 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी होने पर दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रमा को, 4 कन्याएं तार्क्ष तथा 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कृषश्व को ब्याह दी।
3: सूत जी, दक्ष की 61वीं पुत्री का क्या हुआ?
2: शिव महिमा का ये प्रसंग, अर्थात सती प्रसंग, अति महत्वपूर्ण, रोचक एवं विस्तृत है।
3: तो सुनाइए ना सती कथा।
2: अवश्य शौनकजी। एक बार शिव माया के कारण परमपिता ब्रह्मा के मन में एक विचित्र विचार ने जन्म लिया। वे अपने को विष्णु तथा रुद्र से ऊंचा मानने लगे। इस पर भगवान शंकर ने उनका उपहास किया। उन्हें समझाने का प्रयास किया कि तीनों एक समान हैं, तीनों ही उनका अंश हैं।
3: और ये सत्य भी था सूत जी।
2: परंतु ब्रह्मा तो स्वयं शिवलीला से मोहित थे। वे बहुत क्षुब्ध हुए तथा रुद्रदेव से ईर्ष्या करने लगे। उनके हृदय में रुद्रदेव की तपस्या भंग करने की भावना घर कर गई।
3: रुद्र तपस्या भंग करने की भावना? फिर परमपिता ने क्या किया?

0: सोच ही रहे थे कि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर वहां आ पहुंचे।
1: नारायण नारायण। प्रणाम परम पिता।
2: प्रणाम पुत्र नारद। विराजिए।
3: प्रणाम मुनि श्रेष्ठ।
1: प्रणाम। ओहो, दक्षराज और कामदेव भी उपस्थित हैं। फिर तो अवश्य ही किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप हो रहा होगा।
2: हाँ पुत्र नारद, विषय तो गंभीर ही है। हम प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार रुद्रदेव अपनी तपस्या छोड़ वैवाहिक बंधन में बंध जाएं।
1: परमपिता, आप तो सदा ही रुद्र रूपी शिव का मंगल सोचते हैं। वैसे भी प्रभु, रुद्रदेव की इस घनघोर तपस्या से आपके और श्री हरि के वर्चस्व को हानि पहुंच रही है।
3: वो कैसे मुनि नारद?
1: दक्षराज, आप प्रजापति हैं, परंतु आपकी प्रजा आपके पिता की अपेक्षा भभूतधारी रुद्रदेव को अधिक पूजती है।
4: वो इसलिए नारद मुनि कि काम, क्रोध, लोभ और मोह से विलग रुद्रदेव सबके लिए आदर्श हैं।
1: नारायण नारायण। कामदेव, क्या परमपिता और श्रीहरि हमारे आपके सबके लिए आदर्श नहीं है?
4: अब
1: विशेषकर मानव जाति के लिए, जिसके यही कर्ता और भर्ता है।
2: पुत्र नारद, प्रश्न देवत्व के वर्चस्व का नहीं है, प्रश्न है हमारे द्वारा निर्मित जीवन के सुचारू संचालन का, उसमें रुद्रदेव के सक्रिय योगदान का। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए रुद्रदेव का विवाह अति आवश्यक हो जाता है।
1: नारायण नारायण। तो फिर प्रभु, विलंब कैसा? आप तो रचयिता हैं। रुद्रदेव के लिए किसी सुयोग्य नारी की रचना कर डालिए।
2: नहीं पुत्र नारद, उस नारी का मेरी मानस पुत्री नहीं, मानवी होना आवश्यक है। उसमें रुद्र बीज ग्रहण करने की क्षमता होना आवश्यक है।
3: कौन हो सकती है वो दिव्य मानवी?
2: हे श्रीहरि, आप ही कुछ उपाय करें।
5: प्रणाम भगवान विष्णु देवा।
3: कहिए सृष्टिकर्ता, कैसे स्मरण किया?
2: आप तो अंतर्यामी हैं लक्ष्मीपति, आपसे हमारा कौन सा उद्देश्य छिपा है?
3: विधेय, क्या भूल गए हमें और आपको उत्पन्न करने के पश्चात देवाधिदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिव की तरह देवी शिवा के भी तीन रूप होंगे, लक्ष्मी, सरस्वती और सती। लक्ष्मी और देवी सरस्वती तो हमें प्राप्त हो गई हैं, अब रुद्रदेव को सती की प्राप्ति होना शेष है।
2: परंतु विष्णु हरि, निर्विकार योग परायण प्रभो किस स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगे, वो भी मानवी रूप में?
3: इसके लिए स्वयं देवी शिवा को मानवी रूप में अवतार लेना होगा। शिवा ही शिव की अर्धांगनी बन सकती हैं विधात। ब्रह्मपुत्र दक्ष।
6: आज्ञा श्री हरि।
3: पुत्र, तुम महादेवी शिवा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, उनसे वरदान प्राप्त करो कि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित हों। मात्र वे ही रुद्रदेव की पत्नी होने में सक्षम हैं।
6: जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा।
7: प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिव रूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते। प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिव रूपिणी,

0: पीणी प्रसीद जगन माए प्रसीद।
1: दक्ष, तुम्हारी इस 3000 वर्षों की तपस्या से मैं प्रसन्न हुई। इच्छित वर मांगो।
2: माते, परम आराध्य शिव ने तो रुद्र के रूप में जन्म ले लिया है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं है। ऐसे में रुद्र की अर्धांगिनी कौन होंगी?
1: हे ब्रह्मा पुत्र दक्ष, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
2: महादेवी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें।
1: तथास्तु। मैं शीघ्र ही वीरणी के गर्भ से जन्म लूंगी।
2: मैं कृतार्थ हुआ माते।
3: हां शौनक जी, उधर देवी सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल अवस्था से ही उनका हृदय शिव भक्ति में लीन रहने लगा। युवावस्था आते आते उनकी शिव आराधना महादेव को पति के रूप में पाने की अभिलाषा में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन

0: परमपिता, विष्णु जी, समस्त देवगण एक साथ यहाँ आए हैं। मैं धन्य हुई।
1: पुत्री सती, तुम्हारी शिव निष्ठा से हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं।
2: परंतु पुत्री, रुद्र रूपी शिव को पाने के लिए तुम्हें और कठोर तपस्या करनी होगी।
0: आज्ञा करें प्रभु श्री हरि, मुझे किस वन, किस पर्वत पर जाना होगा?
2: नहीं सती, तुम घर पर ही रहकर 12 माह का कठोर नंदा व्रत करो। एकाग्र चित होकर रुद्र देव का ध्यान करो।
1: महादेव तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। जाओ पुत्री, आज आश्विन मास की पहली नंदा तिथि प्रतिपदा है। आज के इस शुभ दिन से ही अपना व्रत आरंभ करो।
0: जैसे आज्ञा ब्रह्मदेव।
3: श्री हरि, विधे, आप सब एक साथ कैलाश पर?
2: हे दुर्गा पते, हम भविष्य को दृष्टि में रखकर आपसे एक अनुरोध करने आए हैं।
3: निर्भय होकर अपने मन की बात कहिए हरे।
2: सृष्टि कर्ता के रूप में ब्रह्मा, संचालक के रूप में मैं तथा संहारक के रूप में आप रुद्रदेव एक दूसरे के पूरक हैं।
3: लक्ष्मीपते, आपका कथन सत्य है।
1: मैं और श्री विष्णु अपने निर्धारित धर्म को निभा रहे हैं, परंतु देव, संहारक के रूप में आपका कर्म अभी शेष है।
3: तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा ब्रह्मदेव?
1: देव, आपको अपनी तपस्या त्याग कर विवाह करना होगा।
3: विवाह? और हम? हे ब्राह्मण, मैं संसार से विरक्त योगी हूँ, भोगों से दूर रहता हूँ, विवाह को बंधन मानता हूँ। और फिर विधात, मेरे संघार कर्म और विवाह के बीच क्या संबंध है?
1: हे करुणा सागर, आने वाले समय में कुछ असुर मेरे हाथों मारे जाएंगे, कुछ विष्णु जी के और कुछ स्वयं आपके हाथों काल को प्राप्त होंगे। परंतु देवाधिदेव, कुछ असुरों के विनाश के लिए आपका विवाह करना तथा पुत्र उत्पन्न करना अति आवश्यक है।
3: आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप कोई अनुचित अनुरोध नहीं करेंगे। वैसे भी श्री हरि और ब्रह्मदेव,

0: आप दोनों ही मुझे प्रिय हैं, हम अवश्य आपकी बात का मान रखेंगे, परंतु
1: परंतु क्या रुद्रदेव?
0: ऐसी कौन सी नारी होगी जो मेरा तेज सह सके, मेरे कर्म के अनुकूल चले, जो योगिनी हो तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके, मेरे ध्यान और मेरी तपस्या में विघ्न ना डाले, क्योंकि ऐसा करते ही उसका अंत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, उस नारी का मुझ में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अविश्वास करते ही मैं उसे त्याग दूंगा।
1: महेश्वर, देवी शिवा स्वयं दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। वे आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत कर रही हैं। वे आपकी भार्या के रूप में सर्वथा उपयुक्त हैं। देवाधिदेव, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सती का पाणिग्रहण करें।
0: आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी।
2: देवाधिदेव, जगतपते, आप, मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई।
0: दक्षनंदिनी, तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो देवी, मांगो, कोई वर मांगो। दक्षनंदिनी, मौन न रहो, हृदय की अभिलाषा व्यक्त करो, बोलो देवी।
2: कुछ कुछ मांगू तो आप दे पाएंगे?
0: हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मांग कर तो देखो।
2: आप हाँ। मेरे आप मुझे मुझे आप
0: मैं तुम्हें अपनी भार्या स्वीकार करता हूँ।
2: देव, मैं पूर्ण हुई। देव, मैं पूर्ण हुई।
3: आहा, कितना मंगल और मधुर वातावरण है।
4: नारायण नारायण, रुद्रदेव और देवी सती की जोड़ी कितनी दिव्य प्रतीत हो रही है।
3: स्वयं परम पिता ब्राह्मण बन विवाह संपन्न करवा रहे हैं।
4: इस अलौकिक रुद्र सती विवाह देखने को पूरा देव समुदाय उमड़ पड़ा है।
3: मंगल वाद्यों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज रही हैं।
4: अरे अरे, सुनो तो, पितामह कुछ कह रहे हैं।
5: हे रुद्रदेव, हे देवी सती, विवाह संपन्न हुआ।
4: हम आपके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं।
0: हे ब्रह्मा जी, आपने ये विवाह संपन्न करवाया, इस कारण आप मेरे आचार्य हुए। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूं?
5: देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने इसी रूप में इस वेदी पर विराजमान रहें। यहां आपके दर्शन प्राप्त कर मनुष्यों के समस्त पाप धुल जाएंगे, उन्हें विपुल पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी रोगों का नाश होगा।
0: तथास्तु।
6: शौनक जी, आनंद में सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार ऐसी घटना घट गई कि रुद्र ने अपनी परम प्रिय पत्नी सती का त्याग कर दिया।
1: अपनी पत्नी का त्याग?
6: देवी सती रुद्रदेव के किसी कथन का अविश्वास कर बैठी। रुद्रदेव ने अपनी प्रतिज्ञावश तुरंत देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया।
1: ये तो बड़ी दुख भरी घटना घटी मुनिश्रेष्ठ। तो क्या इसके पश्चात दोनों अलग अलग रहने लगे?
6: नहीं सूची, यही तो शिवलीला की

मारता है। रुद्र ने सती का केवल मानसिक त्याग किया था, पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रहते थे, दोनों के बीच प्रेम और आदर भाव यथावत बना रहा। तभी तो रुद्र सती विवाह एक आदर्श माना जाता है। शौनक जी, रुद्र और सती तो सदैव साथ ही रहते हैं, उनमें वियोग असंभव है। उनकी अपनी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है।

यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 4:30 बज रहे ने। आओ हुण तुहानूं लै चलदे आं श्री दरबार साहिब अमृतसर, जित्थों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ,

0: नारी बिलो कहीं हरसी हैं निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई जही सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। श्रोताओं, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चो।
1: सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना?
2: जी महाराज।
1: भीड़ बहुत है
2: किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं।
1: किसी से कटवाणी तो नहीं बोले?
2: नहीं महाराज,

0: जैसा आपने कहा था, हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की।
1: देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को?
2: जहां जहां जाई कुंवर बर दो, तहां तहां चकित चितव सबको।
3: मुझे तो ऐसा लगता है बिन भंज हूं भव धनुष विशाला, मेल ही सी राम उर्माला।
2: बिना धनुष तोड़े ही? क्या बात कही तुमने। तोरे हूं धनुष ब्याहु अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा।
4: अरे एक बार कालौ किन हो, सियहित समर जितब हम सो।
3: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
2: सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संभ उर्वासी।
5: भाटगण तनिक इधर आइए।
6: जी स्वामी।
5: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
6: महाराज, हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे।
7: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण, सुनिए। पंच विदेह कर कहे हैं हम, भुजा उठाए हैं विशाल।
8: सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है, कठोर है, ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा, रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है, और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तिरुभवन जय समेत वैदे ही, बिन ही विचार बरई हटते।
9: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं।
10: पर एक हाथ तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
9: वे समझदार हैं, और वो देखो, वो जो तमक कर जोर अजमाने चला था ना, तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को।
11: अरे सभी तो जोर लगा रहे हैं।
9: बेकार,
6: जान पड़ता है और भी भारी हो गया ये धनुष। मनु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक करुआ।
9: ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं, वो देखो। पर
6: डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे।
9: सब निप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
6: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
9: होगा क्या, लौटेंगे अपना समूह।
6: चुप चुप चुप, जनक जी कुछ कह रहे हैं।
9: शान शान शान।
12: अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या, बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं? इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छोड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर बीन मही मैं जानी। जो जनते बिन भट भूमि भाई, तो पनु करी होते न आसाई।
9: अब क्या होगा?
6: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है।
9: उसका मुख तो देखो, माखे लखन कुटिल भाई भौ है, रद पट भरकत नयन रिसो है।
13: हे दात, रघुवंश सिंह महु जहाँ को होई, ते ही समाज अस कही न कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहू स्वभाव न कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमी तारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापु रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयसु

0: कौतुक करूं बिलोकी अवसो कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं तो आपके चरणों की शपथ है मुझे मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।
1: सुना पर वो देखो बड़ा भाई क्या कह रहा है वो भी कुछ कहेगा क्या?
2: ना सय नहीं रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठा दे।
1: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं
3: जा रहे हैं क्या?
1: बड़े राजकुमार से कुछ कह रहे हैं।
4: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भव चापा नेटहु तात जनक परितापा।
5: ऐसा की देखो तो खड़े हो गए राम पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्षु विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। थवने जुबा मृग राजु ल जाए। सखी देखो तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहूं रामू गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही हैं सब लोग कौतुक निहार रहे हैं कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा हार सकल भूप कर तापा सौधन राज कुंवर कर दे ही बाल मराल की मंदर ले ही।
6: ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिरना चाहिए। देखो ना कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोखे उस सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा।
5: छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है।
7: हो प्रसन्न महेश भवानी मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा आज लगे कि न्यो दो सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुले सहु चाहे कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। हे विदाता मैं किस तरह धीरज धरूं भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है। लगता है सारी सभा की बुद्धि ही पावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरु रघुपति निहारी।
5: सखी सखी तुम जरा सीता को संभालो न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो। राजकुमारी चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जन विधु मंडल डोल।
6: बोलते क्यों नहीं राजकुमारी गिरा अलने मुख पंकज रोके लोचन जलु रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना।
7: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा और रघुपति पद सरोज जितु राजा है तो भगवान सकल उर्वासी करे ही मोहि रघुबर के दासी जेही के जेही पर सत्य सने हो सोते ही मिले न कछु संते हो।
5: आंखें खोलो राजकुमारी वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
8: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए क्योंकि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा का वर्ष

0: जब कृषि सुखाने समय चूके पुनिका पचिताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
1: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखेउ रघुबंश मनी, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मंड।
2: हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग बारह, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा।
3: ये क्या हुआ, कैसी दामिनी धमकी?
4: आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
3: वही तो धनुष है,
4: उठा भी लिया।
3: उठाने की बात करते हो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े।

0: सखियो, राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी, सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती तो पैर किसे छूगी राजकुमारी? समझे नहीं सकी, गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघु बंसमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद से मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: भी कोई बात है?
1: खड़ महीनों का बात।
0: क्यों भाई क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष तार नहीं सरे।
0: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई।
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
0: तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई।
2: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग? उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था?
3: शान शान, अरे आप लोग बैठे।
4: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
3: है। ये कौन आ रहा है? बिशप कंध और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला,
5: कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे।
3: प्रकुपति परशुराम। परशुराम

0: पधार रहे हैं। आप सब क्षत्रिय राजागण अपने अपने पिता का नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
1: दंडवत प्रणाम
2: प्रणाम
3: प्रणाम
1: दंडवत प्रणाम
4: दंडवत प्रणाम
5: दंडवत प्रणाम
6: दंडवत प्रणाम
7: दंडवत प्रणाम
8: विदेह राज, आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीड़।
9: मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं, और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
8: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
9: जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
8: मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं चर चनक धनुष कह तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू।
10: नाथ, संबुधनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा?
8: मेरा दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा।
2: मुनिवर,
11: बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नासी रिस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु
8: रे नृप बालक, काल बस बोलत तोही न समार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार।
11: सुनहु देव, सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु ना दोसु। मुनि, बिन काज करिए कतरो।
8: रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा। कहे देता हूं मातु पितही जनी सोच बस, करसी महीप किशोर। गर्भन के अर भक्तन परसु मोर अति भोर।
11: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव को ठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरे जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर, आपके जनऊ को देखकर, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है, इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। के तो मुनिवर, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहू क्षमहु महामुनि धीर।
8: कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा संकु। काल कबुल हुई है छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहिनाई। तुम हटकऊ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा।
11: हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है? अपने मुंह तुम आपन ही कर, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं था तो तू तब पुनि कुछ कहू, जनेरे से रो के दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी कर, कहीं ना जना वही आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कत ही प्रताप। लेकिन आप मुनिवर, आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा।
8: सुनिए विश्वामित्र, अब जन देह दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बध जोगू। बाल बिनो की बहुत मैं बाचा, अभी यहू मरन हार भा

0: साचा।
1: क्षमा करें बंधुवर, इससे अपराध हुआ, बाल दोष गुण गनहिन साधु।
0: घर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देता जा रहा है, फिर भी बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ। सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो त्यूं श्रम थोरे।
1: हे भगवते परशुराम,
2: अब नारू मालक
1: भगवान परसु दिखा बहु मोहि, नेत्र बेचारी पचौ नृप द्रोह, मिले न कबहु तुभट रन गाड़, विज देवता घर ही के बाड़े।
0: अनुचित है,
3: अनुचित है।
4: नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, कौ की बराबरी करत आयाना। जौ लड़िका कछु अजगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समसील धीर मुनि ज्ञानी।
0: लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई राम, तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही।
1: सुनिए मुनिवर, क्रोध पाप कर मूल, जे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिए अब दाया, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी हो ही पाए पिराने, जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बर गुनी बोलाए।
0: राम मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूँ, बचा हूँ बिचारी बंधु लघु तोरा, इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे।
4: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना, बररे बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुष ही काऊ। तेही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, मौ पर करिए दास की नाई। कही ये बेग जही विधिर सिचाई, मुनि नायक सोई करो उपाय।
0: राम मेरा रोज कैसी जा सकता है, जब अजहू अनुज तब चितव अनय से, मेरा रोज क्या प्रथा हो जाए, नहीं एही के कंठ कुठारू न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। ये भी कोई बात है, गर्व स्रवही अब निप रवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अछति देखाऊं जियत, बैरी भूप किशोर।
4: हे मुनिवर क्रोध त्याग दें, आपके कुठारू के आगे मेरा सिर है, जहिर से जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। मुनिवर प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोसु, बेशु बिलोकी कछु नहीं दोसु। बात ऐसी है मुनिवर, लक्ष्मण तो लड़का ही है, देख कुठार बान धनुधारी, भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी, नामु जान पे तुम्हें न चीन्हा, बंस सुभाए उतरोत ही दीन्हा। यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता। क्षमहु चूक अनचानत केरी, चहिय विप्र उर कृपा घनेरी। हे नाथ हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं, कहां तो धरती पर चलने वाले चरण और कहां उन्नत मस्तक, और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए हमारा तो एक ही गुण है धनुष, और आपके नौ गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि, सभी परम पुनीत विप्रवर।

0: सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
1: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है, मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान। सुन, तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं। चाप स्रवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानू, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं एही परसु काट बल दीने, समर जग जप कोटे ने कीने। तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है, तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम। ये धनुष क्यों तोड़ डाला? तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है, मनहु जीत जब उठाड़ा।
2: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर, रिस अति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभिमाना। यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलबाना, जौरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किन हो, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक तही पावर आना, कहो सुभाव न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरही न रन रघुबंसी।
3: क्या कहूं मैं, लगता है मेरी बुद्धि पटल उखर गए हैं, पर फिर भी राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु।
4: अरे अरे, ये कैसा चमत्कार, धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया।
5: अद्भुत आश्चर्य, राजकुमार है कि ये देवता।
6: देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं। सुनो सुनो।

0: रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुपति।
1: हे श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई।

श्रोताओं, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

ಕಾಶಿ ಕೊನ್ನ ಬಗ್ಗೆ.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की।

और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।